शिव कामना के तो इतने पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतिता है, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, वृत्ति वाले भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया। शुभ भावना रखी ना, मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभकामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा, ये पापी क्यों आए हो। शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

लिए आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज।

0: нас ударила бабочка. Бабке ты мира бача, ар бача ке ты мира баба. Китна мита баз. Бас мира жо кере. उसकी कमाल हर एक की दिल कह रही है मेरा बाबा बाप की दिल हर एक बच्चे प्रित कह रही है मेरा बच्चा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा के और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये तो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स

0: manakim balik. Gimana kok ese jalau? Jese pau or bah ko jalate. Jo chahte ho wo karte hai na. Abhi aap jao yahan nahi, yahan rakho, rakh sakte ho na. Aise mind control. Jo chahe wohi man sankalp kare. Roz raat ko result dekho. Aaj man ke rolling power, controlling power kahan tak rahi? Abhi vyarat ko samapat chalti chalti karna chahiye. Tab samrat ban vayumandal mein samrat पन की शक्ति फैलाओ. बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते. सुनाया ना पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार. करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये के नहीं चलेगा.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की भूल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई से डर कभी भी कोई एक दो के प्रत कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। कार्ट्रिज का नहीं, काट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ, क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो नए नए बच्चे आए

जल्दी से।

Shut up.

Shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Freaking.

这么

0: जीवन कितने कोष्टमा बन जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साकी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहते हैं मेरे साथ है, मेरा साथी है ना, ऐसे मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो देखती नहीं है कि साथ में कौन है। बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। साखीपन का तख्त चोरों नहीं, जो अलग अलग बुशारत करती हो ना, उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही बुशारत करो, साखी का तख्त नहीं छोड़ना, और कुछ दिमाग तख्त नशी साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर ही अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए छोड़ना है और क्या बनना

por rica.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा जी ही चाहते हैं आप थोड़े समय में के लिए विधि है, बहुत सहज

我退守，热烈地接抱你，手。

chicken. Oye, Febri, shanting. Oye, remdel, buena. Oye. Yeah.

casa no se parpulo. Toti te chao. Ye kyu karta, ye kyu keta. Ye soch nahi karu. रहम दिल पर अपन ने गुनों का अपने शक्तियों का सहयोग दो. इसको कहा जाता है मास्टर महासयोगी. सयोगी भी नहीं, महासयोगी बन.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय क्योंकि अगर सारे दिन को अटेंशन से जी करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सब रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं।
4: Peace.

So

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो प्रबंधों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: लगा देंगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप से व्यर्थ को चलाओ, कहाँ कहाँ से चुनकर

0: 날씨라고. 매부름만 소프리스타. चलते फिरते फरिश्ता रूप फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना फॉलो फादर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: गम
1: आज भाग्य विधाता बाप अपने Stay.

Yuki, apa mesti Bye.

Geschichte, Rika. Absorbe Degre.

し

sanno se something.

0: समझते हैं। कितना बड़ा भाग्य है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे, जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के कौन थे, कौन है वो बच्चों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज क्या संकल्प किया, बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही है, बनना है नहीं बनना ही है। कोई भी बातें है, बात के बजाय बाप को आगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है, क्या कहेंगे? मेरे साथ पीछे वाले भी कहेंगे।

Isso, amiba.

Cuando ya tiene.

sé.

0: बेहोश कर दे और बाबोश मिला दे कि तुम मेरे हो। मेरा बाबा कहाँ चला गया? तो बंद आंख याद किए जादू से खोल देती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

pushed.

Hey.

Спасибо.

0: この国士が安保がない。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shit.

0: हमने तो बहुत कोशिश की, फिर फिरा आ जाता, चाहता नहीं हो लेकिन आ जाता है। कारण पता है, चलाते हो बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता, दृढ़ता सफलता की चाबी। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई। और उस सरकमस्टेंस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि ये फिर से नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते। जन्म में भी

0: ese.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसीलिए बाप दादा सब

में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक ऐसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावनार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाती है ना। आप विश्व में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता भराओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्रह्मांड जीवन है मसीह की, संगम युग है मसीह का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह वाह है, शरीरक व्याधि में भी है वाह, ये भी बहुत उतरता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे, प्रसाद कभी किसका पर्सनल कहा नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो सबके पुराने चाहे जवान रह जाए पर छोटी और बड़ों से भी कांका कमजोर चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

DPRC.

0: कल अपने लगा जाए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होता है ये पाठ पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ तो कभी कभी होते नहीं है, मानो कमर में दर्द है, मेजर दृष्टि को होते एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द, तो कभी खुशी नहीं है ना तो बहाना करेंगे मेरे को कमर दर्द।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

ese.

Berlin.

0: रस पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

गाड़ी में।

Yes.

Some

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन मुक्त।

श्रेष्ठाचार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनता है सेकंड में पाश्वतानर बनेंगे ना, परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रही है, तो पाश्वत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See?

Yeah.

0: किसका नहीं मानता तो करावर आहार आत्माओं, ये कर्म इंद्रिया करनार करावनार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप शुरू में ये अभ्यास किया जो रोज समापति के समय इन कर्म इंद्रियों दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होंगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनार मालिक बन समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया तो आपको भी करावनार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राज है। ये कर्म इंद्रिया साथी है तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष संस्कार स्वभाव को संस्कार को इनों का क्या हाल रहा और फौरन चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन लेते हैं कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा तो आत्मा राजा बन करनार कर्म इंद्रियों से करावनार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया बच्चे कहते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाते हैं पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण सी अपने स्वमान के सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सेट पर बैठने वाले के ऑर्डर कितना भी करो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चले। सेवा का अटेंशन रखना इतने दुखी आत्माओं को चिल्ला रही है। उन्हों को गिरना देने की सेवा में जैसे वाचा से

0: Let's see.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल देकर के सारे सजा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पांडवों का गायन किया है पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, साथ भी रहे साथी भी रहे। इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजय पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी। इसी में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है साथ रहेंगे साथी रहेंगे, माया का दरवाजा बंद।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद। परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आप

Para negeliat.

0: ไว้
1: पूछने के लिए भी आ
0: अरोस भी जाते हैं, अरोस दे भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोसे हुए को भी मनाते आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है? बाप दादा के साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सब के निकल के कदम हो baby.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे

0: कि सतीश का भी आवाज है लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? वो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते, कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते, कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो मैं कौन, मैं फ्रिस्ता यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

केसरा रेतन में।

Oh, shit.

Chichori.

Sunday.

Chocholo.

उसके लिए बाप दादा विशेष

कोई बात छोड़ने चाहती है, लेकिन मैं तो बहुत बातें देखना

devagar, sarasa, swapan matravio. संकल्प से

三

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। Son.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Força.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि पेशेंट से पूछेंगे, कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य भी नहीं चाहिए।

0: way. Or tadi ko drishti di. Us drishti ke will power se.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी।

उसमें फर्क पड़ जाता। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ silly।

परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं। मंसूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने

0: से मरना पड़े, मैं मन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैं मन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं मन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राजभाग्य में जीना है। मंसूर है, मंसूर है टीचर्स, तो बाप दादा यही देखने चाहते, समझा?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चाहता है जानने में तो सब हो जाएगा।

स्वपरिवार।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, वो बात है ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि ये बात है बच्चों का कल्याण भी कर सकते, जो भी स्वयं बने हैं वो बच्चों को ऐसे तैयार करे जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि ये क्या कमाल कर सकते। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है? ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे, अगर ये समझ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। आते हैं वो ये वायुमंडल

dítek खुश Fuck. Oh.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से
4: जो

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता। महान इस रूप में आता है, तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाती है तो खुद नहीं बक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

0: Nein, Mann.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, पहुंचने की क्या बात, कंफ्यूज होने की क्या बात, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मोच जाते हो, मोचना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मोचेंगे नहीं मोचेंगे क्या? अभी नहीं मोच रहे है सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मोच भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज। उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का युग है या मोचने का युग है? क्या है मौज का है, फिर मोचते क्यों? अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मोचना शब्द निकाल लो। निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं, तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में? नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर। पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे? पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते। सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा ये अपना टाइटल याद करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी

Demnächst.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा की,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ಮೂರನೇ ತರಫ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ नहीं बन सकता और कुछ नहीं मांगता।

ചോട്ട്.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कितने सर जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत। Revise.

समझ गया और डबल लाइट का अनुभव किया। रियलाइजेशन का कोर्स अभी

0: और सामने रखो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसको एक लाख सहस्र नंबर भी हो सकते हैं, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते सने देते देते आपके
2: फास्ट चेक।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो बच्चा हसूर के हर्षरी मत हासर हसूर कर चलता है, हर कदम में जी हाजिर।

0: сильнее. Дорожче тобі.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और जलन में आनी चाहिए।

Chapterna. Say.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: यूज करना चाहिए, सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाए। और दूसरी बात क्या होती है, चलो भी नहीं, तो माया भी ऐसे उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं। इसीलिए माँ दादा उस नजर से आपको नहीं देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा का था सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और आप सोचो, संस्कार कौन से है? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति ये है ना। तो अब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे

संस्कार बना दिया। पराए माल को अपना बना लिया। पाप किए खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है। कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती। रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे।

भी पाप कहती है कि पाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब पाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो पाप भी कहते हैं। जो भी हो जैसा भी

0: ये तो जाना ही है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सजनी बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा, सदा साथ रहना। अच्छा ताना पाना ताना दे दिया, अच्छा दिल भी दे दिया। दिल बाप को दिए, अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है। बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे
2: लेना। इस बात को भी याद रखना, कोई
1: पीपी मिटाना नहीं। जन्म का व्रत किया कभी भी एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेगी।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू साक्षात्कार शुरू।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहो। और ये डबल प्रालंबुद्ध बना रहे आवश्यकता अगर समझेंगे तो आप पीछे रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाती है लौकिक काम करके तक के आते हैं। क्या करें, नहीं खुशी खुशी में दोनों निभाओ। क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है, तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वाद रंग लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा केंद्र भी संभालते। हाँ उठाओ हाथ। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा बना हार करा रहे। इंस्ट्रूमेंट पावर के आधार पर चल रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ प्यारा नहीं, जितना

Sabe?

0: sama apa nih? Ormesap kau. Jusya teh apna pun jauh teh na. Faham. Halka pun ote.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shabbat.

0: небе. Тощий я дракон. Мира картофекия.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ होना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम,
4: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना ठंडापन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

жрачки.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे निश्चय जारी निश्चय में पास होना है, वह तीन में दो में नंबर वन होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गए। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती, माया भी कहती कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते। बिठा देते मेरे को तो अपना राज लाने में परसेंट में तो समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ ऑर्डर करे बच्चे अगर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को आर्डर करें। हाथ उठाओ, तैयार हो, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा पेपर, यू आर रेडी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा तो कहते ही है कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक अचानक भी बहुत समय हो गए, अभी होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष कर हो जाना तो है, वो नहीं है अभी सिर्फ निमित्त बनना।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

not gonna.

che ci trome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kairaje.

Kesey.

0: sabí, pero legen.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कारण हार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है।

0: से कादकारी नहीं बन सकते तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन उसके साथ साथ उसी समय

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

दूसरे को भी खुशी दे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते, अब नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें।

You see?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Lord Bodywarko. Take Dolia. Babdata Samaste. Ke aap chahi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रही है, वो चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो, बहुत मेहनत है बहुत काम है सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना, ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या, अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अनुभूति वो करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय कमाने वाले नहीं होंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ और

यज्ञ के ब्रह्मा

0: दृढ़ संकल्प के कर तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Anoki. Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sí.

しい。

0: பரம்தாம்.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।